0: Belki bugün, belki yarın neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size. Bu son vedam size. Elveda.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Punjabi.
3: Ek ajehi duniya jithe giraffe hun sab to uche janwar nahi han. Zoo Victoria maan naal chidiya ghar vich dinosaurs nu pesh karda hai. Apne sare manpasand janwaran de vich teen chidiya gharan vich 60 to vadh asli aakar de dinosaurs de naal ek puratan itihasik muhim layi taiyar hovo. Melbourne chidiya ghar, Werribee open range chidiya ghar ate Hillsville sanctuary de vilakhan bahari vatavaran vich animatronic jeevan nu jonde jagde vekho. चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हैं। आज ही अपनी मुहिम की योजना बनाओ।
2: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
4: साइंस वर्क्स विखे जीवंत नवी प्रदर्शनी की खोज करो। एक नवी रोशनी विच दुनिया नू वेखो। उत्सुक बच्चियां ते जग्यासु बालगां लई चमकदे खनिजां, ऑप्टिकल परमा अते हथी प्रयोगां दी पड़चोल करो। रंगां नू वेखो, रोशनी नाल खेडो, हैरान होवो। हुण साइंस वर्क्स विखे एक खुल गया है। museumsvictoria.com.au विखे टिकटां प्राप्त करो।
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: जनगणना दी रात 11 अगस्त मंगलवार सी। हर घर ले जनगणना पूरी करनी लाजमी है। जनगणना पूरी करने ले हाले भी समा है। census.abs.gov.au/punjabi ते जाओ जा 1-800-181-2277 ते फोन करो। ऑस्ट्रेलियाई अंकड़ा ब्यूरो कैनबरा वल्लो अधिकारत।
1: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
6: अगला प्रोग्राम पंजाबी भाषा दे विच।

इस गीत दे विच एक मुटियार अपने घर वाले दी हसबैंड दी मेहनत करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेला लग्या होया मैनू तू कल्ली नू घर छड्ड के क्यों जा रहा, मैनू भी उत्थे लैके जा। पर जदों मेले च पहुँच जांदे आ, इह तों अगली गल की हुंदी है, मेले च पहुँच के की हुंदा

हाँ जी, इस गीत तो बाद आप जी दे नाल साझी करन जा रहे हैं रिपोर्ट। यह है सवालों के घेरे च भारत विच मरदमशुमारी। आउण वाले समय दे विच मरदमशुमारी विच एक खुले सवाल राही जाति नूं दर्ज करन दा फैसला बहुत निराशाजनक है। सरकार चाहती है कि गिनती करन वाले सिर्फ उही लिखण जो लोग आप कहण, ना के ये परखण के कोई खास गोत जां उपजाति किसे मन्ने परमन्ने जाति वर्ग विच आउंदी है जां नहीं। पर इस नाल एक वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है कि बिना किसे पक्के हिसाब किताब जां नेम दे जाति दी गिनती तो कोई अर्थ भरपूर सरकारी अंकड़ा तैयार हो सकदा है। साल 2011 दी समाजिक आर्थिक अते जाति मरदमशुमारी दा तजर्बा सानू पहला ही सुचेत करदा है। उस वेले लोकां नू अपनी जाति खुल के दसण दी छोड़ सी, जिस दे नतीजे वजों लगभग 46.7 लाख जातियां दे नाम सामने आए। आखिरकार उस अंकड़िया नू वर्तनयोग रूप विच बाहर नहीं लियांदा गया सी। उही पुराना तरीका मुड़ अपना के किसी नवे ते चंगे नतीजे की उम्मीद रखनी बिल्कुल भी जायज़ नहीं जापदी। सरकार ने लोगों नू जातियां दी कोई लड़ीबद्ध सूची यानी ड्रॉपडाउन मीनू देन की बजाय इस तों गुरेज कीता है। जाति की पछाण बहुत गुंझलदार हुंदी है, जो कि वक्-वक् सूबियां ते भाईचारियां विच बदलती रहिंदी है, जदों के गोत ते उपजातियां हमेशा सरकारी श्रेणियां नाल पूरी तरह मेल नहीं खांदियां। जदों घर घर जाके गिनती करन वाले कर्मचारी खुद तय करन लग जाण के कोई व्यक्ति किस जाति नाल संबंधित है, तां इस मरदमशुमारी नूं सरकारी तौर ते जातियां दे फैसले सुनाउण वाला एक विवादित अखाड़ा बना सकदा है। अजिहा होण नाल सरकारी काम विच पक्षपात, खाना जंगी ते बेनीमियां ते सियासी हेराफेरी होण दे गंभीर दोष भी लग सकते हैं। इसलिए जाति दी सही अते भरोसेयोग गिणती करन वास्ते जरूरी है कि लोकां वल्लों दिते जवाबां नूं संभालण अते परखण लई पूरी तरह निरपक्ष ते पारदर्शी प्रणाली बनाई जावे। मरदमशुमारी शासन दा मूल आधार हुंदी है अते इस वल्लों इकट्ठी कीती जाण वाली जानकारी आउण वाले कई सालां तक लोक नीतियां नूं तय कर सकदी है। साल 2019-20 दे CAA यानी कि नागरिकता सोध एक्ट विरोध प्रदर्शनां दौरान विवादां विच घिरे कुछ सवालां नूं इस वार शामिल करन दे फैसले नाल इस उत्ते सवाल उठने लाजमी हन। कौमी आबादी रजिस्टर NPR ने 2020 दे खरड़े विच राष्ट्रीयता, मापिआं दे वेरवे, मोबाइल नंबर, आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आदि दे वेरवे शामिल सन। उस समय सरकार वल्लों शक दूर करन दीआं कोशिशां दे बावजूद सिविल सोसाइटी समूहां अते विरोधी पार्टियां नूं डर सी कि NPR NRC वल जाण वाली पौड़ी बन सकदा है। इसलिए साल 2027 दी मरदमशुमारी नूं पूरी पारदर्शता ते स्पष्टता नाल करवाई जानी चाहीदी है। एक कामयाब मरदमशुमारी ओह हुंदी है जिस विच किसे देश दे नागरिकां नूं गिणती दी इस प्रक्रिया उपर पूरा भरोसा होवे। इस दे नाल ही साडा अज दा प्रोग्राम इत्थे खत्म होण जा रहा है। अगले हफ्ते आप जी दी सेवा च मुड़ हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। साडे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। रहिंदे समें दे लई लओ सुणदे आ इह गीत।